0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: हामी जन्मदात्री शिकारी हुँ शिकारी पूरे दैलेख मलाई चाहियो
2: VFX सिनेमास कुराही दश नारायण पुरसौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम नाम सत्य
3: हेलो फ्रम अमेरिका वाक वाका वाशिंगटन डीसी जस्ट डब्लू बस हेलो हेलो हेलो
2: त्यसै गरी 2083 साल वैशाख

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद करदा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: स्वदेश तथा विदेश का 5 स्टार होटल रेस्टुरेंट र रिसोर्टहरूमा 100% रोजगारी को सुवर्ण अवसर
2: क्षेत्री भित्री नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होटल तथा पर्यटन तालिम मा भर्ना खुलियो
1: राष्ट्रीय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम काठमाडौँ को 50% सहयोग में मात्र 40 जना को लागि
2: अब दाम को घोराही बजार में रहेको होटल पौवा में होटल तथा पर्यटन तालिम संचालन हुँदैछ नोट सीट र समय एकदम सीमित छ आज संपर्क गर्नुहोस्
1: तालिम में दिइने विषयहरू
2: स्पेशल कुक तालिम इंडियन चाइनीज कन्टिनेन्टल र इटालियन
1: स्पेशल शेफ तालिम
2: जापानीज सुशी तालिम
1: वेट्रेस
2: टूरिस्ट गाइड
1: हाम्रा विशेषताहरू
2: स्वदेश तथा विदेश का 5 स्टार होटल हरूमा काम गर्नुभएका अनुभवी सेफ प्रशिक्षकहरूबाट तालिम दिइने
1: एक्स्ट्रा प्राक्टिकल अथवा जब गर्न चाहेमा काठमाडौँ पोखरा नेपालगंज र दाङमा रहेका विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा पठाइने
2: जापान दुबई यूरोप का विभिन्न देशहरूमा जान चाहेमा विश्वासिलो मेन पावर को व्यवस्था भएको
1: टाढाबाट आउनेहरूका लागि खाना र बस्नको विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ
2: तालिम साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ अन्य थप जानकारीको लागि होटल पौवा घोराही बजार क्याम्पस रोड दाङ
1: सम्पर्क मोबाइल 98410-17-09
2: आयोजक नेशनल टुरिज्म डेभलपमेन्ट एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्राइभेट लिमिटेड थमेल काठमाडौँ नेपाल

0: का बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

6.98 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ, सर्जन फिजिसियन हार्ट जोड्ने नसा प्रसुति रेडियोलोजी एनेस्थेसिया बाल रोग थाइराइड प्रेसर सुगर छाती मुटु नाक कान घाँटी टाउको ग्यास्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिरिबार अपरेसन लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण काम।

व्यक्ति रहल बा। वहां से जनता का आवाज ऊपर खेलवाड़ करना सकते हूं हावी हुई खोजती रहल टिप्पणी करती। लोकतांत्रिक गणतंत्र हन कमजोर पार विभिन्न खाल का षड्यंत्र हुई रहल बतवा रखल। कार्यक्रम सभामुख तुलाराम

0: मध्य पश्चिम जायन्ट ज्याक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक ती मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-561-210। थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि नीरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिस आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-563-218।